आओ करेंगे ना मनी हो करेंगे मान लिया चीनी ताकुब बाय वो जराओ है पना चंग नाइसिंग याने चाय तक नहीं करेंगे नहीं चाय तक नहीं

0: Hello.
1: Hello?
0: Hey.
1: Hello?
0: Can I do say that? Could the canani current?
1: Hello, hello.
0: Ah, the sagrada. Okay. पैला बखा जरा ते सदी कईम दंगसो जिन ते दाम खान सिनानी बगे दबुक हेल्थ कैम्प रग खाई सक हमग्री ते हेल्थ कैम्प रग कमी रगे बजे सा थे रग फान खे आर थे खाना ते सैमानी फिर हाई नई ग्रं लयाने हेलो फंकाम सगरिता को
1: बोल मैं तो छमन नागमत का खबर खाते नहीं सेमन के नखे दा
0: दा दा

0: 他给那个门板呀，那个什么，他给他们的爸妈参加你的时候，抓到了五六斤，给到多少米？单位把几家搬家，家不离家给，抓阿拉米家开始放开，给阿公去你带回去的卡，快点吧。你主要阿拉米家开放开，你不搞个啥买，你开个啥买，你完全不搞啥买，
1: 别
0: 整别。
1: 对 ，OK。
0: 看到搞啥搞啥，他一放松了，他阿拉米放开，你不搞啥米家，主要阿拉米家有，都拉你搞走。这主要阿拉米家放开开个搞啥，别的不搞啥买买呢。包括放开结果，全部搞啥开，那完全搞啥开，他来不慢了，跟不慢了，
1: 看
0: 见
1: 了，看见。
0: 다
1: 응
0: 그럼
1: 뭐라고하는지모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠어나도모르겠खाने मानी बिशंती एब कोक्त मा खाने मान बिशंती कोक्त मा ब्लाइ पौरी मानी बिशंती जुदा जुदा हेल कैम थांग मानी बिशंती कबंग मानो फरी हनी है कोक दुगो हेलो आ कोक दुग बाइक करंग मान लिया और जरा वो फरी के चंग चिनी ते जरा खेबिया वे चंग और जरा वोदि छति गायसन ओलोना जों हायन खरांग पाना खनमा भजिं थांलेन आबनलो हायन हायनर करंगि मानो तमुंगनर चिनि कोगदुक नंबर साइमानि हंकाय हायन हाय शारिफिनाय 9485007172 परिगे खनाय तुंदि सालकमा पांदा एफएम ओजेंते सरसा पॉइंट ऑफ मेकर्स आकाशवाणी आगरतला

0: प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ओ कक या फांगन रगई कक इशा
1: कक्थुम खाना फाइसिंग थांगलायानो दिनैनि कक्थुमो पैलाव खानालायनि अ बिसिनि 2026 नि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकिया बहादुर मेमोरियल अवार्ड नि बागै कयब्लाय रेनानि साख्लायमुं अर जे बर' रग रों गो हिन्दी कालचार ते हेरिटेज एबा हुकुमु नते सामुं तांगै खातिमुं गो बेलाय बर'नि याक तंग एबा जे ख्लाय फाइनाय रग जे मुचुंनाय रग बरक साकनि बागैते बुइनि बागिबो सिउइ तंखांकै आमहाय बर' रग्न बरकनि बागै कयब्लाय रेउइमानो ते तेबो अवनतियै डिटेल्स एबा सबाय सुक्रुबै सायमाना नेंकाय जे वेबसाइट ica.tripura.government.in थांगिनाय सायमानानो हेंकाय तुमु कयब्लाय रेनानि हेंकाय जे नांगमानि बरनि वेबसाइटे थांगै ताम ताम डकुमेन्ट्स रकनां ते ताम रकनां न आब रकनो सायमानै नै अल रनानि फ्रु हंकाय कायनि थायरोगो थायरो इरमानो कायसांखा गांधीघाट आबो डायरेक्टरेट अफ इन्फर्मेशन एन्ड कल्चरल अफेयर्स ते कायसांखा जानि जानि आम चायनि डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन बाय कल्चरल अफेयर्स तांगनगो जे रनानि ते अब रनानि सालमारेंखा दिनैनि सिमि चेंजाखनाय आबंखा अ जुलाइ तालनि जि स्नि सालमारिनि सिमि तंनाय अगस्त ताल बसकां तालनि दग सालमारि जरा अमाहायके मेल इमेल नि बिसिन दिखेब एप्लि कयब्लाइन रहरिमान आबंखा बरकनि इमेल आइडि ICACultureSection@gmail.com अबब अगस्त तालनि दग सालमारि जरा न तंनाय शारीरिकनि दाम दग ताममानि जरा
0: आनि आगु कायसो तंग अब हंखाय मुख्यमंत्री आरोग्य निरामय अभिजान अबनि वाइनि बेरेम ओङै दंखा असामं बुतां अब हंखाय इ तालनि सालचिब्रै सालमारिनि सिमि अमतंनो सालनि जिसा जलाय तालनि सालमारि जरा असामं बुतां नंनि बिसिङ तिनि दङ डिस्ट्रिक्ट हंखाय वेस्ट त्रिपुरा ब्लक हंखाय बामुटिया अब ओङानो सात दुबिया कमिउनिटि हल नग तै जरा हंखाखै फुंनि दामचि तामानि जरा दिनै तैबो दङ अब हंखाय जिरानिया थाय हंखाय मजलिसपुर अमब फुंनि दामचि तामानि जराउनो तै तैबो दङ मानदाय अब हंखाय बिरकुदास बारि हाइ स्कुल रोंनग जराखै फुंनि दामचि जरानो तै कैसे दङ अब हंखाय ओल्ड आगरतला ओमखाय थाय हंखाय बेलमरा फुंनि दामचि तामानि जरा गुमति डिस्ट्रिक्ट अब हंखाय करबुक ब्लक अबखाय करबुक महकुमा हस्पिटल नै जराब फुं दामचिनो धलाइ डिस्ट्रिक्ट ब्लक हंखाय डम्बर नगरबाय मनु अब हंनो सदानंद पारा बाय लक्षणजय पारा आशिक जरा जो कक थम्र खनालाख्या तब खनालाने सेबगो बरक्त लांगमानिको त्रिपुरा आदार सुपारवाइजर तै अपारेटर नैसाय नैचिदग इंग्रेजी बिसिनि सी एस सी ओ गवर्नेंस सार्विस इंडिया लिमिटेड अब हारजाखनाय अबनि पस्टनि बुंखाय आदार सुपारवाइजर तै अपारेटर सेबुक नि बागै जरा खालायजाखा बिसिनि सानि बागै अबंखाय कन्ट्रेक्चुअल तै अम सालथां त्रिपुरानि बागैनो अबंखाय आदार सेवा केन्द्र ए एस के रोंमारिना नांनाय क्लास टुवेल्भ पास हेकाबा माध्यमिक पास बिसिकनि आइ टि आइ नि मानमारि दंना नांनाय तै कैसे दङ

0: हेलो,
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: हैं राकेश बाबू, स्वागत है आपका, के बोलूँ।
1: जी जी, तो बहुत अच्छा विषय है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले चिट्ठी हमने अपने दोस्तों को भेजी थी, जब दिवाली का टाइम था।
0: अच्छा,
1: तो दिवाली के टाइम में क्या भेजा था? तो हमने पहले तो शुभकामना भेजी कि आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर अपने जो भी अपनी ये भेजा है कि हम इसी तरह से हमारा दोस्ताना बना रहे और हमारे जीवन में खुशियों की मिठास आते रहे। तो ये जो है पहले हमने ये जो है सभी मिलके सभी दोस्तों ने जो अपने अपने नजदीक थे तो उनने सब मिलके जो है यही भेजा था कि सबसे पहले हमने नए दोस्त को ये बात भेजने की हमारे जीवन में खुशियों की मिठास बनी रहे।
0: एकदम एकदम अनेक धन्यवाद राकेश बाबू, अपनी अपनार বন্ধুকে চিঠি লেখার প্রথম স্মৃতিটুকু আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন, অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা, আমাদের সবার জীবনেই মিষ্টি মধুর সম্পর্কগুলি থাকে আর এই মিষ্টি মধুর স্মৃতিগুলোও থাকে, যেগুলো অনেক দিন পর পর যখন আমাদের মনে পড়ে তখন সত্যি মনটা একদিকে তো ভালোই হয়, তার সঙ্গে ওই যে পুরনো সময়টায় খানিকক্ষণের জন্য আমরা ফিরে যেতে পারি, ওই ভালো দিকটাও কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা রয়েছেন বলছি তোমায় পর্বে, আজকে কথা বলছি আমরা চিঠির যুগ, আপনার জীবনে সেই প্রথম চিঠির স্মৃতি কি আপনার মনে পড়ে, সেই নিয়ে আপনি আপনার অনুভবের কথা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন 03 8 1 2 3 2 6 2 5 3।

0: सबले आता पहिला पहिला ओ बाबा हे खले फेनो छे मनमा बर सब खता अंकाय अबनी लर्निंग पहिला सिनी चक माने रम दि स्टेज फन पहिला परफॉर्म खाइका ए बक रेकॉर्डिंग फन खाइका अब हाय पहिला नि अनिनी सिनी मुंग मान माने रचाप मुंगले बबो
1: अबनके अब हिंदी रिचामुंग गीत कुमार रिंग आ बरक नि रिचामुंग रिचाप पाइ माने या गुलो विष्णु थाम या गुलो तेवसा कौब्रु रिचामुंग रिचाप रिचा खा चिनी पारानि न खर अनि मामा नक लायो के बिनी आ रिचामुंग आरो तांसा तांनि मारचाप खा के आ आरो जे तांनि रिचामुंग खर माने आबुनि उंगै न सिनि जाखा
0: आबखे बबो बट रिचापमु
1: आबोंके ओ सारुइ सन्जाओ हन सुनिया नो खानी तानो आशाए और जब
0: खाली खाना खा बालोखा और जब
1: नौ बालोखा को 2004 मार्च अप्लाई माने खाना कैसे रहा पूरा लाइफ कॉन्सर्ट रखाया को माने स्टेज परफॉर्म रखाया को ता अब कैसे ओ नो पुला और जब तंग नहीं जब ग्राम माने ये सब खा इनके एल्बम खोर खा
0: अब गीत कुमार नहीं
1: अब इनके क्या अब गीत कुमार या गीत कुमार के हिंदी गानों से सब रो इनके तब वो अंशारी संजो हिमाने वो के बीपी मॉल्सोई अनिका कनो क्लायो बिनी सुजाक बिनी सुर खाई जाग जब इनके और वो एक्टिंग खाई नहीं इनके दास हरत इनके ते खरो से बिजी तारी यंग बरो खरो नहीं खाई कता गान कचाम अब खेमन ये गुलो किसा त्रिक त्रिके सिनी जागे फाई कता
0: अंकाय नुंग तो आकाशवाणी बो एप्रोप खरक से आर्टिस्ट अबले बो इयर नुंग एप्रोवल मंखारो
1: एप्रोप मनि के 18 2018
0: वो बालो गेखो साना थांगाय
1: 18 दिन खमु न 17 पोइ थांगा
0: अंका अबनो रिचाप मुंग जेनिंग निन बाबा रचापुंग हामचकमा बागै नगर रचापुंग रखनालाय माने अ लयतमा बागै नंग रचापुंग हामजागै थांगाते निनि बिसिङो जे रचापना रं माने अ म सिजाखा आं फियाबा चिनि कबांगमा रचापुंग करंग रखनि बिसिङो न जों नगो रचापुंग सरंगै रचापना रंनाय आबो हायनि साय आचे फुनि सिनि न रंनि आचे माने आबो हायसे कबां गाय नं आबो हाय से मादा मानखा जे क्लासिकल सरंगनानी एबा रचाप मुंगनि के बुगुरु तंगो बिनि थानि ओ सरंगनानी आमो हाय सेब दा मानखा
1: आबो इनखे पुला पुला जे फुरु रिचाप मुहा पर हा फायखा रिचाप खा आफ्रु इनखे तां सरंगजायखो हायनो आं किसा मिसा रुंगै खनाओय रिचाप माने इनखे रिचाप आबो रिचापते आं आशुक बेले उंग्लाख ति किसा सरंगखे सिखे नुखे बा तेबो आन बागे हामानो हिने वानसुगै आं उलखे 2013-14 गुरु खरक सानाहारि बिनर श्रृंखा
0: क्लासिकल
1: क्लासिकल श्रृंखा माने बेसिकता बेसिक न श्रृंखा बाइके रिजाबनाय तम रिजाबमुंग न सिना बागै रिजाबमुंग न तेबो गोबां खे सिउइ रुंना बागै हिंखे बिनर श्रृंखा निया गुलो आं डिग्री खायखा एम म्यूज म्युजिक नतुइ हिंखे आबुनिया गुलो एम म्यूज खायखा मास्टर डिग्री म्युजिक नतुइ
0: गाय मास्टर डिग्री चीनी बरक नि बिसिंग तो आस गोबां बकरीना क्लासिकल मास्टर डिग्री खलाइचा गाय नों तो अबो सरना बागे खलाइका बुनि लगे लगे आस डिग्री ना हाका बा सेबुक नि सेब बतंग ना हायमा तंग नों आबनो नालिया दा ना ताउ नानानि साखथारि तंग बाहाय
1: नानानि तो साखथारि तंग तामखे गोबामन ताबो कलेज म्युजिक नति खुलुक जाक तंग स्कूल कलेज रगो उंगै तंग हायफनो পার্মানেন্টলি নাহার জায়গা খোবা না জায়গা বা হাপনা ফোন হাপি মেয়ে কথা ইনকে নিনি খুমুলুং ফোক মিউজিক কলেজ তঙ্গ আর রগ মানে তামহিনে না জাগিয়া
0: ক্লাসিক্যাল না জাগিয়া
1: রেগুলার চাকরি তিলাং জাগিয়া একা
0: কন্ট্রাক্ট বেসিস
1: কন্ট্রাক্ট বেসিস ব কিসে মিসা বাহি গিতে না বাং সাইমা দুগিয়া তা আংকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বুফুরুং নহে না সিন নুগিয়া ফাই আংকে हाफ जागे आंनि तं खाता को इनके जदि न ना जागो हंखिले आं हाफ खामुता ताव ट्राई खाय दङ मादै मा न नायगना
0: आ ताबुक सख जरा निनि रुचाप मुं रेकर्ड मानि आबनि रेकर्ड तदा तं नंग रेकर्डिंग गै म्युजिक भिडियो उंखा बा निनि अडियो बरक रक नि थानि सगै खा बहाय रुचाप मुं बुसक रुचाप जाखना हाय मा तं
1: रुचाप मुं तो रेकर्डिंग खाजक तो गबां मा न रुचाप खा কবমার চামুং ককা ভিডিও খাইজা খা অ্যালবাম রক ইনকে ফিল্ম রক বরচাপ খা কক বরক তকে ইনকে নিনি কক বরক কাউব্রু অ্যালবাম অমতি রক আনির চামুং কবং মনো

आउ जिन इलम करंग पांडा खनालाय माने यागलो ताबुक चिनि बसकांगो पांडा तंगो जादुनि खरांग पांडा जादुनि खरांग पांडा व थांनानि सिगां जिन ओजराव फाडि चिनि यागो जरा तं खुबा आ जिन खना तो तोकर साफ मंग तांगसा खनाय दामान नायलेयन जायतो गई

फर्नेजरल खानालायनो जिनि रिसाबना गरों बुखुक आयशा दे बर्मा बाय रिसाब जाग्रा जापमु जरा किसि सने बिसिङो बना जों खानालायनो अपान अरे जापमु

आओ चिंग बलाई के ना खाना तो तोग रसाप मो खाना लाई क्या जादू नहीं रसाप मो रसाप ना रखूं का बिशु कुमार ताई बिशु बुद्धि बाइक है रसाप जाग रसाप लाई खाना तो तोग चिंग खाना लाई मान लाई क्या आओ जादू नहीं रसाप मो रोक कश्यत है कश्य कोक खोले या साक लाई मानी कोक बीतेर लाई मानी हमजाक मो या फर लाई मानी मानी लाई मानी बोरम लाई मानी खुलुम लाई मानी पोइटो क्लाइले मानी ओरो बेपाक नो ओ रिसाप मुनि बिशिमो तंगो आउ फारिके चिन तैबो खरा तो रिसाप मुन खना लाइ मानी बुका थां लाइ वन हाइन हे खना लाइ वन ताबक नो रिसाप मुन नो रिसाप नाय रोंखा हेमेंद्र देवर्मा बाय मालती देवर्मा बरोग रिसाप सा रिसाप मुन फादि ओजराव खना लाइ न हाइन हाइ

गदी बाबू गम तेरे कोचुंगा चांदुआ छुआ मैं जाना अनि निलाई आशी बयानी आशी नो अब मुलाकात रेखा वे

आओ हन हाय रसाप मुंग खना तो खना इमान लाइक है जादू ने रसाप मुंग हन है खना लाइफ यू ने जादू ने रसाप मुंग चिनिया को दे किशा ज्वारा तो खुबा चिं खना लाइन है खना तो रसाप मुंग चिं पैथा को खना लाइक है राधिका देवर मा बाहर रसाप जाग रसाप मुंग ताबो खना लाइन है किरण माला देवर मा बाहर रसाप जाग रसाप मुंग बेलाखना खना तो रसाप मुंग फादी चिं ओजरा खना लाइन है

आओ बलाय बलाय खने खनातो खनातो जों रसाबुं खनायमोन खा फारिजिनि यागते किसा जरा तंख ताइबो रसाबुं खनानानै बागै फारि खनालायनो हान हाय गायसा रसाबुं बलाय खना खनातो तो तैजों थानाय जे खनामानि रसाबुं अ रसाबुं नो रसाबनाय खा बिश्वनाथ देबरमाथाय मानसि देबरमा बे रसाब जाग रसाबुं ताबुकनि अ रसाबुं नो रसाबनाय खा रसाबना करंकु अरुण देवर्मा बाहर सब जगह सब खड़ा लाइन फायदे वाते मैसे मैसे और सब नो

0: Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana, also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today, and in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशक

0: मंत्रालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी

0: तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी।

0: इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
2: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मॉल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा

0: अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী আগরতলা জানিয়ে দিচ্ছি আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি। আগরতলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী 24 ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে যে আকাশ সাধারণত মেঘাচ্ছন্ন থাকবে, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বেশ কিছু এলাকায়। আগামীকালের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29°C এবং 26°C থাকতে পারে। আগরতলা বিমানবন্দরে পরিলক্ষিত গতকালের সর্বোচ্চ এবং আজ ভোরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32.5°C এবং 25.5°C

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।

कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती।

जख्म पर छिड़के कहाँ तिफलाने बेपरवाह नमक, जख्म पर छिड़के कहाँ तिफलाने बेपरवाह नमक, क्या मज़ा होता अगर पत्थर में भी होता नमक।

इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही।

0: তাড়াতাড়ি টিফিন প্যাক করো রাজু, মোবাইল ছাড়।
1: আরে দিদি, ব্যাংকের নম্বর দরকার, রিফান্ডই আসেনি।
2: পেয়ে গেছি, কল করে নিচ্ছি দিদি।
0: নাম্বার যাচাই না করে প্রায়ই প্রতারক ব্যাংকের নকল ওয়েবসাইট আর ভুয়ো নাম্বার থেকে টাকার প্রতারণা করে।
2: তাহলে সঠিক নম্বর?
0: ব্যাংকের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা কার্ডে।
2: দিদি তুমি বাঁচালে।
0: কাজ থেকে নয়।
2: হ্যাঁ করছি।
3: আরবিআই এ কথা বলে,
4: সঠিক আর্থিক আচরণ আপনাকে দেয় নিরাপত্তা।
5: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
6: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 225,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं। और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
7: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

बारिश की इन 30 बूंदों में एक अलग ही नशा है। लोग कहते हैं कि बारिश पुरानी यादों को रुलाती है, पर सच कहूं मुझे तो इन बूंदों में तुम्हारे साथ गुजारा हर एक खुशनुमा पल याद आता है। वो हरा भरा मौसम और तुम्हारी वो बेफिक्री वाली हंसी, आज दिल कर रहा है उन्हीं पालों को वापस छीन लूं।

बिछाते ही छतरी जानबूझकर भुलाने की और फिर पूरी तरह भीग जाने की पता है। ये आसमान जब इतने जोर से बरस रहा है ना, तो मुझे तुम्हारी वही मीठी

0: खाना कोरे कंप्यूटर पोर्टले गिये निजराय फॉर्म पूरण कोरबे प्रथमे निजेदेर विवरण पूरण कोरे पोरे बाकी देर सहायता करते होबे उन्नताय पहला अगस्त तेके सरकारी कर्मीरा गोरे गोरे इसी गणना एन्यूमरेशन कोरबे थोकन हमारे समस्त विवरण जानिए निजेदेर ग्रामे उन्नयन सहायता करते होबे एटी अमार अवदेन कर्मकर्ता शिक्षक ओ शिक्षार्थीरा 17 तारीख के निजेदेर विवरण ऑनलाइन पूरण करे कर पुरे बाहरे दीते पारें विकसित भारत अर्जनेर जन्य ई जनगणनाय प्रत्येक नेतृत्व निये एगिए इसी ए कर्मसूची सफल करते अनुरोध जनाची जय हिंद जय त्रिपुरा
1: क्रमखा आंखास्तिनी जतन लुकबाय गाइसा नंगु मनति कप सानाय मुजुंगो बरख लेखमुंग एबा सेंसासो मानदनानी जत बरनि बागैनो बेलेखे नांगुमानि केन्द्र हाफांबाय तुबजाक गोबां मा हामग्राय गोनां तांगोदांनि बागै लुक्रमनि बेलाय हामग्रायनि दङ मुंसा के सिखें रै सेपाय चुबा मुं सिदा सिदि बेंक एकाउन्ट दायरि जागो बुस्तां सालो जत गामि हामग्रायबा हास्तिनि बगजाक रां तांगबतां ताय वानसुक तां आरो तंनाय लुको बांमारि रुगिनो लेखावै बागजांनाय तामनि हिनमाले निसाय चिचिसा बिसिनि बरक लेखामुंगो लुको बांमारिनि लेखामुं खामगे खायजागलिया आबुनि बागै अकामिरगो सयखे लुको बांमारि रगै रां बगजागलिया आबहाय कर्मुं ताय ओंयातै नैसाय नैजिसिनि बिसो जे बरक लेखामुं गानो आबुनि सिगां पैला बोखागो नग ताय नुखुंनि लेखामुं सिमिन अंगानो आबुनि बागै चों नासिङै तंयावै कम्पिउटार पर्टालो हाबै साग बायथांनो फर्म फिलाप मा खालायनाय पैला बायथांनि सिनमुंग्रिवै सुफुंना नांनाय आबुनिल' बुनो सुबाना नांनाय उलो पैला आगुसिनसिमि हाफांनि सेबरक नग नगो थाङै लेखानाय एबा एनमिनेसन खालायनाय आबुरचिनि जत नांमानि सिनमुंग्रिवै बायथांनि गामि हामकरायाव सुबाना नांनाय आबुनो आनि कयमुं तांफां फोरोंनाय तै सोंनाय रक्तिसिनि सालमारिव बायथांनि सिनमुं अनलाइनाव सुफुङै फाथर थाङै मानो क्यगजाक भारत ओंनानि बागै अ बरक लेखामुंगो जतन रक्ति दुनाय ओंगै सिगाङै अतां तां चासरना बागै कबमुं नारग
2: जय हिंद जय त्रिपुरा
3: এতক্ষণ শুনলেন জনগণনা 2027 উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন বাংলায় এবং তারপর এর ককবরক অনুবাদ। অনুষ্ঠানটি একযোগে আকাশবাণী আগরতলা, এফএম উচ্চন্ত, আকাশবাণী বিলোনিয়া, আকাশবাণী কৈলাসহর এবং ত্রিপুরার অন্যান্য সমস্ত রিলে কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হল।
4: আকাশবাণী আগরতলা, এখন শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে। প্রথম শিল্পী শকুন্তলা বড়ুয়া।

0: की कर रहे हो? कैसा बाबा है तुम? इतना फिश खाता है तेरी अकल नहीं?
1: तो क्या करूँ?
0: जूता खोल के धक्का मारो, ये तो जीवन भर फिश होता ही रहेगा।
2: हमारा बीवी सुंदरी भी है और बुद्धिमती भी।
0: तारे तेरी आशो।
3: दुगा दुगा दुगा दुगा।

0: गरीबों की जाय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं, अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2024 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो, इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती,

0: सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
0: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
3: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
4: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को

0: संस्थागत बैंक की सुविधाएं मिल सके। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफल संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम मजाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा एकता बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। 965 अंक पर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंक की विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबर्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का

मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीम टेल के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में,

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ सौ लिए हैं.

दिन मैंने कसम खाई, जब तक मैं 3 अम्बेसडर कार्स नहीं खरीद लेती तब तक शादी नहीं करूंगी। मत पूछो, वो तुम्हारी खानदान की निशानी है। कार फिर ले लेंगे।

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।